0: माँ शक्ति आज पहली बार तुमने काम की बात की है
1: They go in one way, they come out crazy.